उकावाड़ आने की बना हूँ। सिड़ी सिड़ी की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकामी था ही इदा सिड़ी सिड़ी की इथोनी नी दियोगा की इदा सिड़ी सिड़ी की हा नाजा जा खानी नी दियोगा की जाबुनी हा नाजा जा उखानी।